कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: एक तरफा तराजू, तेरी हंसी मेरे आंसू, घुट घुट की क्यों सांस लूं, उसे देगा क्या हिसाब तू।
1: तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा।

भाग्यशाली बोरा परिवार आस्थाशील जी, एक अनूठे अनुष्ठान के जिन्होंने ओपनिंग करी, अभिनंदन है बोरा परिवार का, आग्रह है बोरा परिवार के उस संदीप बोरा को ऋषभ बोरा को प्रेरित बोरा आज से 29 दिन तक नेता बनना है, भक्त बनना है, भक्त बनना है। नेता ओपनिंग करके जाता है तो अपन देखने के लिए भी नहीं आता है। नेता का कैरेक्टर क्या है? हु आर यू? कुछ भी होंगे तो भगवान महावीर के लिए तो आपको भक्त ही होना चाहिए, नेता नहीं होना चाहिए। ये तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का, महावीर के भक्ति का अनुष्ठान है। जिंदगी में हम कईयों से जुड़े हैं, एक बार तीर्थंकर महावीर से जुड़ करके देख लो और किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और जुड़ने वाले सुधर्मा स्वामी हो तो जम्बू स्वामी और प्रभाव स्वामी भी शिखर पर पहुंच जाते हैं। जम्बू स्वामी जैसा वैराग्य हम में नहीं, तो प्रभु स्वामी जैसी दुष्टता भी हम में नहीं है। उन दोनों को ही जो संभाल सकते तो हम तो बीच में हैं, संभाल ही लेंगे वो। तो अगर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक बार इस नगरी ने गुरुदेव का जन्मोत्सव देख लिया है, अब एक बार तीर्थंकर महावीर का निर्वाण कल्याण का उत्सव के लिए बाजे आज से बजने शुरू हो गए हैं। आपकी भाषा में बोलना हो तो आज कुंकू गड़ गया है, आज कुमकुम का कार्यक्रम हो गया है। फिर एक बार बोरा परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन, और इस अभिनंदन को 29 दिन बनाए रखेंगे। दिलीप हो, तीर्थ शिष्य महासाहब ने मुझे एक सीक्रेट जानकारी दी है, बोलू क्या? बोलू। 21 तारीख क्यों ली गई आपको पता है? सुजाता बहन का आज जन्मदिन है, और मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी गिफ्ट राजू भाव ने पहली बार दी होगी। तो थे भी कह दे जो थका श्रीमान जी ने कुंता ही मिलना रही तारीख रन दो, है ना, मिलने मत देख जाओ, मिलने मत देख जाओ, 29 दिन में तो तारीख अला चाहला थके। तिथि सीमा से तारीख नहीं आईला तो वार आईला, वार नहीं आईला तो तिथि आईला। अच्छा मौका है ना जन्मदिन मनाने का। ओके, आइए बैठिए। विरथि का संपुट शुरू होने जा रहा है, और विरथि के संपुट की आपके पास सभी का पुस्तक पहुंच जाती है। उठे थी ना, लाई नहीं, लाई नहीं पुस्तक विरथि? हेलो, लाई नहीं की तो लाई कि नहीं लाई?
पर लाइक नहीं रही, मैं अटे नहीं रही। चलो कल से आप सबको गेट पर युर्थ की बुक मिल जाएगी, है ना। दीपक जी सिट डाउन। क्या अभी आप किताब लाने जाएंगे, बांटने जाएंगे और बीच में नमो रिहंता नम करेंगे, फिर मैं नमो आहिरे नम बोलूंगा? तो अभी जिनके पास है वो

दिन में एक एक गाथा का डेली, जैसे आज पहली गाथा का संपोट है, तो पहली गाथा का कम से कम आज उच्चारण 34 टाइम हो जाएगा। कितने टाइम? 34 टाइम उच्चारण हो जाएगा। और 34 टाइम उच्चारण हो जाएगा तो कितनी जड़ बुद्धि होशिला तो भी याद हो ही जाएगा। और फिर गाने वाला तीर्थ शशि हो तो फिर तो पूछना ही क्या है ना। तो उसके लय में, उसके तान में अगला अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। संपुट का मीनिंग समझते हो? संपुट, संपुट है ना, संपुट। संपुट मंगल है, अष्टमंगल में एक मंगल, संपुष्ट मंगल है। इन दो हाथों के बीच में जो आ जाता है वो सुरक्षित रह जाता है। तो विरुद्ध की एक एक गाथा का संपुट, एक एक गाथा का संपुट, एक एक गाथा को देना है। जैसे पुच्छे सुनम की पहली गाथा का संपुट 29 गाथा को देना है, मुझे वो गाथा कैसी हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएगी। कहम चनानम कह दंसनम से शीलम कमनाय सुयसासी, इस गाथा का संपुट 29 गाथा को देना है तो गाथा क्या हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएगी। ये पंचम गंधर्व सुधर्मा स्वामी का दिया हुआ वरदान तुम्हारे मेरी सबके जीवन में सुरक्षित हो जाए, इसके लिए संपुट का गान है।

जम्बू स्वामी निरंतर सुधर्मा स्वामी से पूछते ही चले गए कि प्रभु ने क्या फरमाया, प्रभु ने क्या फरमाया, प्रभु ने क्या फरमाया, प्रभु ने किसके साथ क्या बात करी, कौन से सवाल का क्या जवाब दिया, कैसे कैसे सवाल पूछने वाले उनके पास आए, प्रभु ने बिना सवाल पूछे क्या क्या बोला। जो जो प्रभु ने बोला वो मुझे सुनना है। और ये सारा सुनते सुनते सुनते सुनते जम्बू स्वामी ट्रांसफर हो गए, ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, ट्रांसफर हो गए। उनको देखते लोग, गुजर जाते लोग देखते, सुना तो था लोगों ने कि पहले दिन शादी और दूसरे दिन रिक्शा, सुना तो था लोगों ने कि जिस डाकू को राजा नहीं पकड़ सके वो डाकू के टोली ने भी जम्बू स्वामी के साथ दीक्षा ले ली, सुना तो था लोगों ने कि पत्नी को छोड़कर के दीक्षा नहीं ली तो पत्नी को योगी नहीं बना करके दीक्षा ली, सुना तो था लोगों ने कि मां बाप को भी छोड़ा नहीं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो तुम्हें भी प्रभु के पास लेके जाऊंगा। ऐसे अनूठे जम्बू स्वामी लोगों ने बहुत लोग देखे थे लेकिन किसी ने अपने मां बाप को साथ में लेकर के दीक्षा नहीं ली, किसी ने अपने एक दिन पहले जिसके साथ शादी करी उसके साथ दीक्षा नहीं ली, किसी ने सास ससुर के साथ दीक्षा नहीं ली, किसी ने डकैती डालने के लिए जो आए उनके साथ दीक्षा नहीं ली। तो जहां जम्बू स्वामी जाते लोगों का झुमड़ उमड़ करके आता था, एक कुछ तो भी अलग है, एक कुछ तो भी अलग है। और जम्बू स्वामी को पूछते तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम ऐसे थे नहीं, तुम ऐसे कैसे हो गए, अरे दुनिया में बहुत थे ना, तूने ऐसा कौन सा धर्म सुना, और जब वो जम्बू स्वामी बताते कि ये तो धर्म ऐसा है कि कीचड़ में कमल खिल गया, ये धर्म तो ऐसा है कि चोर सिद्ध रास्ते पर चल पड़े, ये धर्म तो ऐसा है कि जो मुझे लुभाने के लिए आई थी वो प्रभु महावीर के साथ चल गई। बार बार वो जिक्र एक ही करते, प्रभु महावीर, प्रभु महावीर, प्रभु महावीर, प्रभु महावीर, प्रभु महावीर, प्रभु महावीर। लोगों में चर्चा शुरू हो गई, ये महावीर कौन से, ये कौन से महावीर की बात करता है, ऐसा इस महावीर में है क्या, ऐसे महावीर के पास कौन सा ऐसा नॉलेज था कि जिसके कारण से ये चेंज हो गया, ऐसे महावीर के पास कौन सी श्रद्धा थी, कौन सा विश्वास था, कौन सी भक्ति थी, क्या समर्पण था, क्या आस्था थी महावीर की कि जिसके कारण से ऐसा हो गया, क्या भगवान महावीर का ऐसा कैसा सील था, हमने बहुत देखे भगवान, एक नहीं बहुत भगवान देखे, लेकिन जो नहीं है और फिर भी जिसके प्रभाव में लोग हैं, सूर्य तो चला गया लेकिन उजाला आज भी है, हमने तो उसी सूरज को जाना, जो आता है तो उजाला लेकर के आता है, जाता है तो उजाला साथ में लेकर के जाता है,
ये ऐसा कैसा भगवान है जो है नहीं लेकिन उसका उजाला है और लोगों के मन में चर्चाएं शुरू हो गई। जम्बू स्वामी को जो भी मिलता, कोई श्रवण मिलता, वो बोलते तूने जिस भगवान को जाना वो भगवान कैसा है बता मुझे। कोई ब्राह्मण मिलता जो यज्ञ करते थे, वेद करते थे, और जम्बू स्वामी को देख करके लगता था कि जिस ब्रह्मा की खोज में आप है ये ब्रह्मा इसके साथ चलता है। वो पूछते इसके आए जो लग्जरी में जीते थे, जो मानते थे कि भोगी सबसे बड़ा है, कंसेशन सुविधा यही जिनको प्यारा था वे भी जम्बू स्वामी से पूछते अरे ऐसा कैसा, तू तो पूरा लग्जरी में था ना, ऐसा क्या ज्ञान मिला तुझे, ऐसे क्या श्रद्धा मिली तुझे, ऐसा क्या सील मिला, ऐसा क्या मिला कि जिसके पास, जिसके लिए तूने, तेरे पास जो था सारा तूने छोड़ दिया, छूट गया। कोई अनगार मिलते वही पूछते अरे हमने भी छोड़ा लेकिन तेरा जैसा हमको नहीं मिला, हमने भी घर छोड़ा, हमने भी दान छोड़ा, तुझे जो मिला हमको नहीं मिला। जो भगवान महावीर को नहीं मानते थे, जो भगवान महावीर के विरोधी थे, वे भी आकर के पूछते ये क्या मामला है तेरा, ऐसा कैसा हो गया तू, ऐसा एकांत बिल्कुल ऐसा सचोट जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा हमने देखा ही नहीं बोले किसी को। धर्म तो बहुत देखे बोले, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत देखे लेकिन ऐसा तो देखा नहीं बोले। ये लोग पूछते हैं, लोग पूछते तो जम्बू स्वामी को भी लगता है मैंने तो भगवान का, भगवान ने जो कहा वो जान रहा हूं मैं, भगवान जो बोले वो मैं सुधर्मा स्वामी से ले रहा हूं, मैं तो केवल फ्रूट ले रहा हूं लेकिन भगवान कैसे है नहीं जानता हूं। जिस पेड़ के फल ऐसे हैं वो पेड़ नहीं जानता हूं, और तुम्हारी हमारी तो कहावत है आम से मतलब, किससे मतलब, आम से रामेश्वर क्या करना भाग्य चर्चा करने, मतलब से मतलब ज्ञान मिल गई हो ना छोड़ दो उठे। और वही जम्बू स्वामी भी उसी में चल रहा था लेकिन लोगों ने इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे और सवाल का जवाब उसके पास नहीं कि सुधर्मा स्वामी से जितना सुना उसी के आधार पर जवाब देना, स्वयं की खोपड़ी चलानी नहीं और अपने को चलाए बिना रहना नहीं। जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी में और अपने में अंतर क्या है, जिस खोपड़ी में कचरा ही भरा है उसको चला नहीं। जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी ने अपनी खोपड़ी नहीं चलाई, वो प्रभु के खोपड़ी से चलते थे, वो प्रभु के ज्ञान से चलते थे, प्रभु के आस्था से चलते थे, प्रभु के सील से चलते थे। हम दो कौड़ी के युगों के बल पर चलते हैं,
दो कोड़ी का ईगो छोड़ो तो अनंत वैभव तीर्थंकर का मिल सकता है। खुशेम की खोपड़ी चलानी नहीं, जिसको देखा नहीं वो बोलना नहीं। मुझे परसों जानकारी मिली कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है ना, वो भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलता है। परसों जानकारी मिली और कल पेपर में खबर पड़ी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूएसए के डिफेंस यूज करती, और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दिया कि चाइना अनुमति लेकर के आ रहा है उनके आर्मी, और अमेरिका उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। बाद में चेक किया तो पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ बोल रहा है। तो मैंने पूछा तो सामने वाले ने जवाब दिया मुझे, बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आदमी ने बनाया ना, तो आदमी के लक्षण उसमें आने आने बोले। आदमी झूठ बोलता, बोले वो भी झूठ बोलता है। इनका कमाल हो गई यार। और विशेषता थी उनकी, झूठ कौन बोलता पता है आपको? जो अपनी खोपड़ी चलाता वो झूठ बोलता है। झूठ बोलने के लिए खोपड़ी की जरूरत होती है। हेलो, झूठ बोलने के लिए बिना खोपड़ी के झूठ बोल ही नहीं सकते। झूठ बोलने के लिए बहुत मेमोरी लगती है, याददाश्त लगती है, बहुत दिमाग चलाना पड़ता है झूठ बोलने के लिए। सच बोलने के लिए दिमाग की जरूरत है। हेलो, झूठ बोलना बुद्धिमान लोगों का काम है। बुद्धू लोग झूठ बोल ही नहीं सकते। खोपड़ी लगे झूठ बोलने, थकते ने खोपड़ी जितनी जी रखने खोपड़ी ज्यादा उतना वो झूठ बोले। कई बार था ने आपने यस बोल रहे, आपने हंस रिया है, कई समझो मैं ये बिल्कुल पक्का गने थे कि झूठ बोलने के लिए लॉजिक लगता, झूठ बोलने के लिए बहुत चलाना पड़ता, सच बोलने के लिए जो है सो बोलना, उसमें क्या दिमाग चला, जैसा सुना वैसा बोलना, जैसा जाना वैसा बोलना। इतनी सी भी आदत अपन लग जाए ना तो पांचवा आराम में अपन एक भाव अवतारी हो सका, हो सका। खोपड़ी नहीं चलावनी, कहीं नहीं चलावनी। और थे सोचो खोपड़ी चलावनी बंद करी तो ब्लड प्रेशर हुई ना, नींद आराम हुई ना, माथो दुखी ना, हेडेक हुई ना। अनहे कितनी अपनी खोपड़ी, कई कीमत अपने खोपड़ी रही, दो कौड़ी भी नहीं मिलेला। स्मशान में जाकर के कौटी लेकर आ, देखो कौन दो बदले में दो कौड़ी। कोई दी ना कौड़ू थर हाथ में खोपड़ी देखने के लिए निकल आता हूं। और जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी की सबसे बड़ी विशेषता, लोग उसको पूछते हैं और उत्तर नहीं, तो उसने मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक। जम्बू स्वामी को लगा कि परमात्मा ने जो फरमाया वो मैंने सुना, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, वापस कह रहा हूं, ध्यान में रखना। मैक्सिमम जैनी लोग भगवान कई फरमायो उत्तम चिवे भगवान कने जावेज को नहीं।
भगवान ने ऐसे बोले, भगवान ने उसे बोले, भगवान उस, अरे भगवान था कैसा? और जो जिसकी तुम्हें प्यास लगती है वो तुमको मिलता है, जिसकी भूख लगती है वो मिलता है। मैं और तुम इस संसार में इसलिए भटक रहे हैं कि हमें कभी परमात्मा की प्यास नहीं लगी, हमें संयम की प्यास लगी, हमें सुख की प्यास लगी, हमें ज्ञान की प्यास लगी, हमें चरित्र की प्यास लगी, लेकिन परमात्मा की प्यास नहीं लगी। परमात्मा के वरदान चाहे लेकिन परमात्मा को नहीं कभी मांगा। बड़ी सी प्यारी सी कहानी गुरुदेव ने प्रवचन में कही थी, एक बार आपने भी सुनी होगी वो, कि मेरे से अधिक प्रवचन किसने सुने होंगे तो आप लोगों ने सुने। मैंने तो एक ही दुकान का माल लिया है, थक्कन ने तो कितना दुकान रो माल है, घना दुकान रो माल है, मारा कने एक दुकान रो माल है, थकन इतना दुकान रहा माल है, इतना दुकान रहा माल है कि अंदर से भानुमती रो पेटारो बन गया था। मालूम से नहीं पड़े थाने काला जीरा कौन सा है, नहीं गोरा जीरा कौन सा है। मैं झंझट रखीज को नहीं, एक दुकान रो माल, थकन कितना दुकान रो माल है, घना दुकान रो माल है, मारा कने एक दुकान रो माल है। और फिर जम्बो स्वामी को प्यास लगी परमात्मा को पाने की, परमात्मा को जानने की। और कैसे जानूं परमात्मा को, परमात्मा तो अभी है ही नहीं। ये तो लोगों से सुना था मैंने, जम्बो स्वामी को ये पता था कि भगवान महावीर का जन्म कैसे क्षेत्रीय कुंड ग्राम में हुआ, चैत्र शुक्ल त्रयोदश का जन्म हुआ, मार्गशीर्ष दीक्षा हुई, केवल ज्ञान हुआ, तीर्थ की स्थापना करी, वो गोरा था, कंचन वर्णी काया थी, समोसरण लगता, सब जानते थे वो, ये सब दिखता था। लेकिन जो दिखता है उसको जानना, कि जो है उसको जानना। जल्दी बोलो, ठीक ही पूछता रहो, लड़के देखने जाओ, लड़को देखने जाओ, तो जो को दिखे उन्हें पूछो, कि जो को है उन्हें पूछो, बस वो तो देखो। परिणाम क्या है मालूम है था, कल एक परिवार महाराज कर आया तो अब मने पूछने आए कई करो, और समस्या बड़ी गजब की थी। बोले शादी हुई बेटा जी, और पांचवा दिन जकी गई, पांचवा दिन गई बोले, चार दिन भी फुकता, कई झगड़ों ने, कई टंटों ने, कई बखेड़ों ने, चार दिन में कहीं हुई ना, चार दिन में कहीं नहीं हुए। बोले आओ नु सुनी मने, अब कई करू मैं, क्यों कई करू, नहीं बोले थका वचन रो असर पड़ी ना थे, थोड़ा मैंने समझाओ ना कई क्यों मारी असलियत उन्हें। मैं इतना दिन कुनो किए रे लोगा ने, कि अरे हम में जरा टेनर के लिए थे, थका बिलो फूर्टी ने भेजो, बिलो फूर्टी ने भेजो, बिलो फूर्टी ने भेजो, ब्लिस पुल कपल में भेजो, पुरुषाकार में भेजो, अष्टमंगल में भेजो, ये जैसे शिविर ले रही उरा में भेजो, उठे मैंने लेवन के लिए बुला रही हो तो भी कोई भेजे नहीं, इनको आवे नहीं। अनु मने के भी कहने थका वचन रो प्रभाव पड़े, मने माले में भरा वचन रो कितने प्रभाव पड़े, सको
મેં મારા આરમી જરા ટેનરને કહ્યું, અરે તે કમસે કમ એક એક જણો એક એકને બી ભેજો તો મારા શિબિર હાઉસફુલ હો જાય. કેને કહ્યું? ટેનરને કહ્યું. મેં બી આટના સુને આઠ જ રખે. હવે કઠે કયું નહીં હાલત મારી. હે હે શું હે? કે બહુ મને થોડો પ્રેમ છે કે બહુ મારો કોઈ સંપર્ક કોની વાળા સાથે, મારો કોઈ પરિચય કોની, બહુ મારો કોઈ રિલેશન કોની. 17 સાલ બાદ નગર મેં આવ્યો હું, મેં નહીં બોલ શકું. પછી કઈ કરું? મેં કહ્યું નહીં આવે તો છોડ દે. અરે સલ્લો પૂસાને જવાનું તો બાબુ સેટ કરીને જવાનું, મારે કઈ કઈ કામ. એનો અનુભવ તો ઉરા કરી જતા કિને કિસ્સો લાવનો. એનો અનુભવ કેને જતા મને કઈ, મને અનુભવ હોતો તો મેં થાકલારે કેમ લાગતો? પછી મેં ડાયરેક્ટ નહીં લઈને આવતો કે તો જંબુ સ્વામી કો લગા નહીં. પૂછી સુનમ સમના મહાનાય, આગારીનો યા પરતિથ્યાય, સે કે નેગંત યધમ માહુ અને લિસમ સાવ સમી ગયા. મુજે સબ પૂછ રહે, યોગી ભી પૂછ રહે, ભોગી ભી પૂછ રહે, જો પ્રભુ કો માનતે વો ભી પૂછ રહે, જો પ્રભુ કો નહીં માનતે वो भी पूछ रहे. तुम्हारे प्रभु कैसे, तुम्हारे प्रभु कैसे. 2013 की बात, संभाजी नगर में महावीर गाथा का नियोजन था. पहली बार संभाजी नगर महावीर गाथा ने, और महावीर जी पाटनी को मैंने कहा, वहां के समिति को कहा मैंने कि मुझे ओपन में करनी है और जैनियों के लिए नहीं करनी, सबके लिए करनी है. सबको बुला, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सरदार जी मराठा सबको बुला. तो उन्होंने कहा कि उनको लाएंगे, लेकिन पहले आप उनके गुरुओं को बताओ कि उनके लोगों ने महावीर कथा क्यों सुननी. और मैं इधर पारणा कर रहा हूं और उन्होंने बाहर पादरी मौलवी ग्रंथी कीर्तनकार सारे बाबा इकट्ठा करके रखे बाहर. बोले ये सब आए हैं, इनको बताओ कि इन लोगों ने, इनके अनुयायी ने महावीर कथा क्यों सुननी. थे लोग किने संतानी फसावन में एक नंबर का होते. उठान गया वहां पर और कहा उनको, तुमको घर में झगड़े चाहिए कि प्रेम चाहिए? तुमको जिंदगी में कंट्रोल चाहिए कि आउट ऑफ कंट्रोल रहना है? तुम्हें ओपन माइंड रहना है कि बंद माइंड रहना है? तो सबका जवाब जैसा आपका आया वैसा ही था. यदि मैंने कहा तुमको सच में प्रेम से रहना सीखना है, तो जिसने चंड कौशिक को भी प्रेम से रहना सिखा दिया, उस महावीर से मुलाकात करो. तुम्हें सच में झगड़ों से बचकर के प्रेम से रहना हो तो उस महावीर से मुलाकात करो, जिसने जो लड़ने के लिए आया था उसी को अपना प्रमुख चेला बना दिया. ऐसा एक 5-7 मिनट बोला. उसके बाद वो पादरी खड़ा हो गया, मौलवी खड़ा हो गया बोलने के लिए. और उस मौलवी ने कहा कि हम जानना चाहते थे कि कैसा महावीर है जिसके पास डंडा भी नहीं था, तलवार भी नहीं थी, जिसने डराया भी नहीं, जिसने लालच भी नहीं दिया, और उसके बावजूद ये सारे जैनी उनके पीछे आज भी चले जा रहे हैं.
ये तुम नंगे कदम चलने वाले आज भी तुम महावीर के पीछे चल रहे, महावीर के मानते हो तुम। ऐसा उस महावीर में क्या है हम जानना चाहते थे, बोले लेकिन कोई बुलाता ही नहीं हमको सुनने के लिए। आपने बुलाया, बोले हम जरूर आएंगे। वह क्रिश्चियन ने कहा, और मैं आपको बताऊं क्योंकि समय हो गया मेरा, आखिरी दिन था महावीर गाथा का, राजेंद्र बाबू दर्डा रोज तो बोलने नहीं देता किसी को, आखिरी दिन बोलने के लिए खड़े हुए। कहीं ना रहे हूं लड़का, अमीन नाम का एक लड़का है, मुस्लिम लड़का जिसको पोलियो हुआ था, वो राजेंद्र बाबू के पड़ोस में बैठा हुआ था नीचे, और अमीन जैसे राजेंद्र बाबू बोलने के लिए खड़े हुए तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि मेरे पड़ोस में अमीन बैठा था, मैंने उसको कहा तेरे पाँव में तकलीफ है तो ऊपर बैठ जा। उसने मुझे जवाब दिया, बाबू जी आप आ जाए हो, मैं पहले दिन से आ रहा हूं। और बोले मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस समय तृतीय शिष्य ने भजन शुरू किया तो उनके साथ वो गाने लग गया, कमाल हो गई। बोले महावीर की प्यास सबको है, सब चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमें मिले कि जो हमें तीर्थ बना दे, और तीर्थ बनाने वाला कोई है तो केवल तीर्थंकर है। और जब स्वामी ने पूछा सुधर्मा स्वामी से, और साथ में शर्त लगा दी, बड़ी गजब की शर्त लगा दी, बोले खोपड़ी मत चलाना। क्या किसको कह रहे, सुधर्मा स्वामी को कह रहे, जम्बू स्वामी उसकी गाथा कल है, आपका जवाब नहीं चाहिए। बोले आप नहीं चाहिए, वो चाहिए। जैसे वो है वैसे बताना, जैसे तुम जानते वैसे मत बताना। कौन कंडीशन लगा रही हो, जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी कंडीशन, और साथ में कह दिया जैसे तुमने शांति से उनको जिया वैसा बताना। तुम्हारा माइंड गड़बड़ हो उस समय देखा हो मत बताना बोले। और उसमें से जन्मी हुई व्यर्थ हुई। इसमें तीन शक्तियों का संगम है, कितने, तीन शक्तियां, तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य, पंचम गंधर्व सुधर्मा स्वामी का पुण्य, और जम्बू स्वामी की भक्ति। ये त्रिवेणी संगम है विरथोई में। दर्द तो मन में है, दर्द तो मन में है, महावीर के जयकारे लगाने वाले महावीर के गीत गाने के लिए नहीं आ रहे। महावीर के शासन के पचकार लेने वाले महावीर के गीत गाने के लिए नहीं आ रहे। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा, ऐसा तख्त तैयार होगा जैसा मुस्लिम में तख्त है कि जो जो नमाज अदा नहीं करता है वो मुस्लिम नहीं। दिल की तमन्ना है, इतने कड़क शब्दों में इसके पहले बोला नहीं हूं, बोल रहा हूं। दिल की तमन्ना है कि एक दिन वो भी आए जिसको विरथी का गीत नहीं आता गाते, वो जैन नहीं, और जो विरथी का गीत गाता है सुधर्मा स्वामी के देह वरदान जिसके पास है वो जैन है। ये पाठ किसका है, सुधर्मा स्वामी का है। ये गीत गाया किसने, सुधर्मा स्वामी ने गाया है। ये आना ही चाहिए इनको,
आज से अनुष्ठान शुरू किया है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि एक गाथा 29 बार होगी, बाद में ध्यान में आया एक गाथा कम से कम 66 बार तो हो ही जाती, और 66 बार बोलने के बाद तो रात में भी सुनाई दी ना। तो आनंद मंगल, चदार्य मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोत्तम मंगलम, चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोहित।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।